सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने जो बयान किया, सत चित आनंद, वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है, तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणित दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या।

0: और फिर फैसला गुरबाणी दा, पता है कि एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है, नहीं ते सदा ही ना पाक, गंदगी दी ढेर, गलाजत नाल भरे आया मैला। महाराज शुद्धता मनते ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ते खुद भी अपवित्र, एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे च भी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, होर तरह तरह की सेवा दे जुटे होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़े है। तो मैं अर्ज करा, इना सारे धार्मिक कर्मा दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे, उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलिन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा, इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता, किवें शुद्ध होवेगा, किवें पाक होवेगा, ये किस तरह पवित्र होवेगा? तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शने, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने, ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया के वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हों के बोल आरंभ आते ने एक तो, बाणी आरंभ आती है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत आउणगे, पर सतगुरु का फैसला, यह बाणी बिरलो विचार सी। एक बिरला विचारेगा, और बिरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया? हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदया मनुख का संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदया मनुख का आचरण बदल जाता है, चिंतन दे बदलदया मनुख का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदया। और किधरे बहुगिणती दे मनुखा दे विचार बदल जान, इसे नू कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया। युग बदल गया। युग की तब्दीली मनुख के विचारां की तब्दीली है और मनुख के विचारां की तब्दीली युग की तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे का सारा आचार बदल जाता है, युग बदल जाता है। और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख के विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज़े जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। एदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं ना तेनु समझ, ना तेनु बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थीए जा हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे इस दान देश भी पखंड होवे, तेरे इस मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है, ये पूरने ने। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, इस सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नु अपने विचार अर्पण करन दी जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करन दी जाच आ जाए। मनुख दा मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करन दी जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करदा है, गुरु अपने विचार इस नु दे देंदा है। मनुख दे विचारां विच लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां विच काम है, गुरु दे विचारां विच राम है। मनुख दे विचारां विच हंकार है, गुरु दे विचारां विच निरंकार है। मनुख दे विचारां विच क्रोध है, गुरु दे विचारां विच दया है। मनुख दे विचार विच मोह है, गुरु दे विचार विच प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहिंदे ने बिष्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस उपरले राख्यो गुमान है कि तेनु हड्डियां दा माण है, तेनु मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नु नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नु गोरा, किसे नु काला, किसे नु सांवरा, किसे नु लाल, किसे नु जर्दी माइल, किसे नु गेहूं आ रंग, एक रंग नहीं है। तू वेख ही जग तो पाया। परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगा दिख नारायण है। रंग सबे नारायण है, जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े आया मांस, और मांस दते लिपटी हुई मिंज, और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां, मांस, मिंज, कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग, इसनू कहिंदे मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया, बुद्ध। ते जद मनुख किसे नू याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा है। तान मान दीबाण साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है, ये ते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा माण करदा है, कोई प्रभता दा माण करदा है, कोई धन दा माण करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा माण, जोबन दा माण, प्रभता दा माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, माण तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस ते? उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल तान नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, उते मरण तो पहले मर गया, उते कबर दे चला गया, उते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर। तो जोर किसदा? जोर हुण प्रभु दा। तान मान दीबान साचा नानक की प्रभटे। ए प्रभु, हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही मान है। परमात्मा निर्मल है, उसका मान भी निर्मल है। बाकी हंकार मैला है। विचार जद बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां दे च है की, मनुख दी सोचणी दे च की है? अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचणी दे बदलदिआं ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं, यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है, मनुख दे विचारां दे च की है, सोचणी दे च की है, यादां दे च की है? धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां दे च, मनुख दी सोचणी दे च, और मनुख दे चिंतन दे च काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है? कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं, अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने। पढ़ो अपनी सोचणी नूं, सोचणी दे च की है? और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां दे च की है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है? तेरे दिमाग दे च की चल रहा है? तेरे मन दे च की चल रहा है? पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न दी जाच आ जाए, साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे, शुद्ध कर लेवे, साधु, जो साधना दे च लीन है, मन नो समझण दी कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइयां नु समझ ना सके, ते मन दे हथों ठगा गए, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाए दा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और ओह कह रहे जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा, उही कह रहे जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल कर देने, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करता है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा दे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना ही तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, धोखा हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, यह भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कोई समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओही हो सकेगा जो सुनदा है, ते सुनना ही ते कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाणा इको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों के दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है, दर्शन करने ने, वेखना है। अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ी है। अज एक मंदिर की कोठड़ी विच भगवान नू वेखी है, फिर बाहर वेखी है, फिर सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देवे, साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साढ़े मुसलमान भरा जाते ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज, सारी साधना पढ़न ते खड़ी है, कुरान की तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना इहदे वास्ते एकाग्रता चाहीदी है थोड़ी जिहा। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द, सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असीं इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, कतई ही नहीं, दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा, सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महो अंदर जो फुरने चल रहे हैं सब उन्हां नाल जुड़े हैं, कठिन है। अगर कोई सुने तो साहिब कहिंदे नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनदियां ही दुख नाश हो जांदे ने, सुनदियां ही पाप नाश हो जांदे ने। सुनदिया ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदिया ही गुरु की विचार अंदर प्रवेश करेगी, अंदरों अहंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे, सुनना ही तो औखा है। और सुन ओही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे, इधर भटकदा पे है, इधर भटकदा पे है, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है, इन्हें की सुनना है। सुनने लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी, जब बोलन वाला इतनी उची उची बोल रहा है, तो कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। बिना ध्यान दी एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द दा अंदर प्रवेश होना कठिन है, और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुन के ही मनुख सिद्ध बन जांदा है, पीर बन जांदा है, नाथ बन जांदा है, ज्ञानी बन जांदा है, दानी बन जांदा है, इतना पावन हो जांदा है कि 68 तीर्थ भी उस तो सदके कीते जा सकते ने, सुनिए 68 का इशनान, इतना पावन हो जांदा है, वो तो इतना पवित्र हो जांदा है जे किधरे सुने। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर प्रवेश करदी है, वो पच के मिंज बनदी है, खून बनदी है, मांस बनदी है, शरीर दी शक्ति बनदी है, तवानाई बनदी है, इंद्रियां दा बल बनदी है। गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र, नहीं तो कौन सुनता है। शौकिया लोकी अपने घर दे च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधर सुनना ना पै जाए, कौन सुनदा है, कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी, साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम, साढ़े विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया, साढ़े विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार, निर्माणता विनिमरता तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहिंदे तालमेल नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए, सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है, गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहिंदे ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसे दिन कीर्तन सुनदे आ किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया, अवल ते मैं देखे कीर्तन दा रस ते किसे नूं ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫੋਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਕਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਏਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ। ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5000 ਅਰਬ ਅੰਗੂਠੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿਤਨੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਆਵਾਜ਼ ਅਲੱਗ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਅਗਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੇ 1000 ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 10000 ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 1000 ਅੰਬ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਦੇ, ਰੂਪ ਦੇ, ਆਕਾਰ ਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਤੌਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਖਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਬਨ 50 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਤਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਿਖਤਰ ਗਗਨੰ। ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਲੱਖ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਿਖਤਰ ਗਗਨੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਂਪਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਰਲੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਬੁੱਢੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਅਨੇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੇਲ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਪਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ। ਖੇਲ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਘਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ, ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨਫਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਖਯਲ ਲੇਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਦ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੇਦ ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਉਸਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਭੱਟ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਦਾ ਪੜਦਾ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ। ਆਖਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, थानू सारी अनेकता विच एक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने सुपन एक पर तख एक इकसमे लीणे। हे गुरु अमरदास, तुसी जागदे रहंदे हो एक दे चलीन रहंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो थानू सुपने भी एक दे ही आउंदे ने, तुसी सुपनियां विच भी एक दे चलीन रहंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक इकसमे लीणे हो, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे हो। ये सारे हिंसे जमा करने पैणगे, जोड़ करना पड़ेगा। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे हो, तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास, ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र बनी, इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आपनू नसीब होया। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस निखेण्यो, इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वरण्यो। गुरु अमरदास कव भल भण तू एक लोड़े एक मन्ने। कवि भल भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, थानू एक दी लोड़ है, तुसी एक नू मनदे हो, एक नू वेखदे हो, एक नू बोलदे हो, एक नू पढ़दे हो और एक नू मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक, थोड़ी स्वपन अवस्था दे च वी तुसी इस गल नू समझ लिया है कि एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, ओही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्हों सारिया किरणां दे सूरज दिखाई देवेगा, उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देवेगा, उन्हों सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई देवेगा। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ए विश्व संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ए अवस्था जिस दी बन जाए ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है। अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखन लिए आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी दा कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसका तमाशा है, इतने होवेगा, तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसे ही अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हिरदे च बस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है, बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पहला अक्षर एक, एक तो गुरबाणी आरंभ होंदी है, ते सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस खंड दी विचार सरवण करदे आ, आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नूं जह सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन, इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਂਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਐਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰਿਐਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ 604-351-5511 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111।
3: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
4: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
5: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
3: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.
7: 1746 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1846 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1946 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: जिंदगी दा हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है।

आप जनाब हो, हर जन मंगल गाव हो, बिसर नाही कब हूं ही ये ते, एह बिद मन मह पाव हो, गुर पूरा पिट्यो वड भागी, जन नानक कतह ना थाव हो। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सत्कार योग महापुरख संत बाबा जवाहर सिंह जी और संत बाबा तारा सिंह जी होना दी बरसी दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी

0: ਦੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਤਿਆਗਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਦਸ ਕਵੀ ਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਦਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਗਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਧੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰਸ ਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹੇ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉਂ ਰਾਜ
1: ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋਨਾ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਹਿਨ ਕੈ ਕਛੁ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋਂ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਸ਼ਵਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕ ਸੰਗ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਦੱਸੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਰ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ में कमल ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यो बस्ता को खुद को चिंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइय
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में देखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स
1: कर्त्रिया रूप न देखै नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुनै काहू के निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विथिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टरै
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा है परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वै ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर हो वित कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मन खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुधै
1: राम नाम सार रस पीवै
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै
1: हर की कथा हृदय बसावै
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल
0: सुख मै जानै अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावै जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करै
0: जिस दास को सब सोजी परै
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरत तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नाहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावै सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करहे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक परकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वेद के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नापतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने को,
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करें,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पाथर बृख न बजाए,
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट शशि असुर नक्षत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिरशत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस तामस सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पसाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिपतरे अप्रभूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिर,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मैं चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भय वैरागी,
0: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रत्यास,
0: जिनको मिले प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अर खंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की नु विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनको वत्या तुम प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदन हारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर भय सर सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गाव है,
0: आत्म रस सुख सह समावे,
1: अपने जन को साथ साथ संभारी,
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करना जोग,
0: ज्योत भावे सोई होग,
1: फिर मैं था उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस पारा वारा,
1: हुक्मे धार अतार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वड्याई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मन उगत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन शास्ते रखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि अवर न आवे,
1: ओह मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत भावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत भावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूला दह दिस धावे,
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे,
0: नानक तेजन नाम मिले,
1: छिनवै नीच कीट को राज,
0: बार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गने जग
1: जीव पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीव देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कर्ण करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: ज्योत स्वभाव है सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मह बस है,
0: कब हूँ सोग हर करंग हस है,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: कब हूँ ऊब आकाश प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: कब हूँ सर्व की होतर वाल,
1: कब हूँ होए वह बड़ राजा,
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा,
1: प्रभु अब कीर्त में आवे,
0: प्रभु भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे तिव ही रहे,
0: वर प्रसाद नानक सच कहे,
1: प्रभु होए पंडित करे बख्यान,
0: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान,
1: प्रभु तट तीर्थ स्नान,
0: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: प्रभु पीठ हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जोन परमे परमिया,
1: नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: ज्योति भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: प्रभु साध संग तिह पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसै पा ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: बल भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदा आप हंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: सिर भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लख कोट पावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किस होए
0: अंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत का दुखन सब को छलै
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अर बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान प्रमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते सोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिललाए
0: ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: ज्यों बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन निंदक का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजै ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास गिरा
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ,
0: ਨਿਮਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ,
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ,
0: ਔਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ,
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ,
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ,
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ,
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ,
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ,
0: ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ,
1: ਮੈਨੂ ਫੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ,
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ,
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ,
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ,
0: ਆਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ,
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ,
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ,
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ,
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਨੈ,
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨਿਆ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ,
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ,
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ,
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ,
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ,
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ,
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ,
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ,
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ,
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ,
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਲਾਵੈ,
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ,
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ,
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ,
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ,
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ,
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ,
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ,
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ,
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ,
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ,
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ,
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ,
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ,
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ,
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ,
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ,
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ,
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੈ,
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ,
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ,
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ,
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ,
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ,
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ,
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ,
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ,
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਣਿਆ।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना परिये पाइए को रहना परिये पाइए।

दे मंगे से सगुण सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खाचले था दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: पहला पर गड्डी लदिए पर पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सत्ता व्या ते तो लव्या

दुख दारू सुख रोग प्या जा सुखकामना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सह

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिल्कुल ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए बड़ी पड़े हो गनगा पाऊनी साधन मारिए।

0: धुबा पूरा तपे का सत गिर धुबा हो काल जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुबा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच।

0: नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न तुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न तुट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी। वे तग आया पे बते।

सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नाद पौ जाऊन ते लोको राज करेंगे। कोट स्नान गजाज गजान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पात अंत फसे जम फास परेंगे। जे नार श्रीपद के प्रास है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बाक ध्यान लगायो। नात फिरो लिए सात समुद्र न लोग गयो पर लोग आयो।

हे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दया जचन उपजायो, आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिवकुन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर या सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछान, घट घट के पढ़ पढ़ की जान, जब उदकारख करा करतारा, प्रजात हरत ताब देह अपारा, जब आकारख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तार सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आपे अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरहंकार निर्भका निर्लंब, व्याल अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कव कहत सदा सिम निरंकार का चीनत नह भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, केह बिज सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कह भूपा, अंडज जेरज सिद्ध दकीनी, उत्पुज खान बाहोर रजदीनी, कहूं भूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एक कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए चम पावे, आ जुगाद स्वरूप स्वयं भाव, आब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता, जे आस तुत तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुहत हुआ मरे, पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट साब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप जनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शुह सकै न कोई, एक बार

है चाओ पाई। संबत 17 है सहस पणिजा अर्ध सहस फुन तीन के हिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

के कर्म कमाया तुद्ध शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रतन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन ने वसिया, पूर्ब लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिने अवर न देखो कोई, हर बिने अवर न देखो कोई, नजरी हर निहालिया। एहो वेस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जिद सुनी मन तन हरिया, होवा रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गात कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र, होवा साचा सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, ना उन द्वारे प्रगट की, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नव निद, तिसदा अंत न जाई पाया।

मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिन का पहे दयाल तिन साधु संग पहया।

कह सितंबर स्वामी सच में आछे साच रहे सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नायले पराचित जाए तो नानक मुखंतर पाए जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भय।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरदयाल सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस। इन्वेस्ट करो 8 acres अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस। तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी दे नाल नाल 5-bedroom हाउस टोटली रीमॉडल विद इनक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ। आज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बाथ नू एट 604-351-5111।

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा और उस तो विपरीत हो जांदा है तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है। क्यों? कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है, ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवया हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस देच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन देच रोग होवन, मन देच सोग होवन तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक देच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है, ये नरक देच जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कही है कुंभी नरक देच जी रहे है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। आज तक मानसिक सोग नो दूर करने वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नो मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनो पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है।
चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नू सोग कहंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग दे किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहुंदा है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहुंदा है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहुंदा है। सोग इस नूं महफलां विच नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने। क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा
पूरी करन देच, जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है, ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है। बावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी लिया है पानी ओही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प, जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी। इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ए नदी गहरी कितनी है, इदा पाट कितना गहरा है, ए चौड़ी कितनी है, ए गहरी कितनी है, तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नापतोल देच नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ए बेचैन क्यों है, तृष्णालु है, ए तृष्णालु क्यों है, एदे अंदर संकल्प ने, संकल्प क्यों ने, एदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहते है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ए किन्नी मील लंबी है, इदा पाट किन्ना चौड़ा है, ए गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर दिता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखिया है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास देच असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गई, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां होईयां, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तों वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी।
इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लब ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन देच पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती देच पक्की जिंदगी किसनु मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में।

जैसे खिड़े मथे मनुख मन लैंदा शरीरक तल ते मैं रोगी हाँ, भुख नहीं लगती पई रोगी है। शरीरक रोग मनुख कबूल करदा है, दूजे नूं दसदा भी है मैनू ए रोग हो गया, ए तकलीफ है, दूजे नूं दसदा भी है, कई दफा वधा चढ़ा के दसदा है। मानसिक रोग मनुख छुपांदा है, मैं बेईमान हाँ, मैं झूठा हाँ, मैं ईर्ष्यालू हाँ, मैं महाहंकारी हाँ, मैं महालोभी हाँ, छुपांदा है, इस रोग नूं छुपांदा है। शरीरक रोग ते आप दसदा है, मानसिक रोग गुरु नूं दसने पैंदे ने, गुरबाणी दसदी है, पैगंबरां नूं दसना पैंदा, अवतारां नूं दसना पैंदा है। जिवें रोगी डाक्टर नूं अपना रोग दसदा है, मैनूं इह तकलीफ है, देखो इस तरह की मैनूं तकलीफ है, तुसीं देखो इह की है। लेकिन कोई मनुख ए नहीं कबूल करता, इतना प्रबल लोभ क्यों है मेरे अंदर, इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतना प्रबल अहंकार क्यों है। जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा, जितना ताकतवर मनुख होवेगा, जितना चोटी का धनाढ़ होवेगा, अहंकारी ना होवे। कवि तुलसी कहते हैं करामात है, ऐसो को जन्मे ओ जगमाई, प्रभता पाए जास मद नाई। कहिंदा ऐसा केड़ा माई दा लाल जमे, प्रभता कोल होवे, ताकत कोल होवे, संपदा कोल होवे, ते हंकारी ना होवे। ऐसो को जन्मे ओ जग माई, कवि तुलसी। ऐसा केड़ा माई दा लाल है, ऐसो को जन्मे ओ जग माई, प्रभता पाए जा समद नाई। पर हंकारी तो हंकारी मनुख भी नहीं कबूल करेगा, मैं हंकारी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं लोभी हूं, बेईमान हा। यह गुरु नूं दसना पैंदा है, यह पैगंबरां नूं दसना पैंदा है, तेरे अंदर सच्चे नाम दी भुख नहीं, तेरा मन रोगी है। भुख दा ना लगना रोग दी अलामत है। भूखे खावत लाज ना आवे, भूखे नूं स्वाद बड़ा आंदा है, रुखी बुरकी च भी स्वाद आ जाएगा। अंदर भुख जाग पै, वाहेगुरु आखण दा रस बन जांदा है, वाहेगुरु आखण दा स्वाद बन जांदा है। और जद वाहेगुरु आखण दे च रस आण लग पवे, समझ लेना इस बंदे दा मन तंदुरुस्त हो गया। जिन्ने चिर तक बाणी दे पाठ दा रस नहीं आ रहा, कीर्तन सुनन दा रस नहीं आ रहा, लोकी कहिंदे ते ने आनंद आ रहा है, नहीं मैं ऐसा नहीं महसूस करदा, हो सकदा है मैं गलत समझे होवे। कोई सुरीले कंठ नूं रस समझ लैंदा है, कोई सुरताल नूं रस समझ लैंदा है, शब्द नूं रस कोई विरला ही समझदा है, गुरु सिख आशिक शब्द दे। जिस दिन शब्द रस बन जांदा है, जिंदगी बदल जांदी है। जिन्ने चिर तक सुरताल आवाज रस बने होया है, यह रस भी बनेगा, बेरस भी हो जाएगा। इको ही तरह का सुरताल जे दो तीन दफा चार दफा सुनने का मौका मिल जाए, तो ओही स्रोता कह देगा नहीं है रागी कुछ भी नहीं है, ओही सुर ओही तार। जे किते शब्द नाल जुड़ जांदा तो भावे शब्द ओही है, नवे तो नवा रस बनेगा। साहिब मेरा नीत नवा, शब्द कदी पुराना नहीं आता। जितनी गहराई नाल सुनदा जाएगा, नवे तो नवा रस बनता जाएगा, नवे तो नवा आनंद बनता जाएगा। पर ते सुर ताल नूं सुनदा रहा, कंठ नूं सुनदा रहा, शब्द नूं ते सुने ही नहीं। इस वास्ते सुर ताल ते पुराने हो जांदे ने, धुनां ते पुरानियां हो जांदियां ने, कंठ ते पुराने हो जांदे ने। मैं फिर अर्ज करा, स्वाद नहीं आ रहा शब्द दा, अजे भुख नहीं पैदा हो। वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस नहीं बन रहा, अजे भुख नहीं पैदा हो। भुख पैदा होवे, मन तंदुरुस्त होवे, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, निर्मल कर्म केड़ा है। साहिब कहते हर को नाम जप, यही श्रेष्ठ धर्म है, हर को नाम जप यही निर्मल कर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। इस जप दिया

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.